0: the
1: extreme energy drink.
2: Radio Pity FM. Radio Pity FM.
3: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व्यक्ति 2.7 मेगाहर्ट्ज़.

0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हा त पोर्सालिक बात सम्झोट आम्मिन्द लक्टी रहट बरा पानी बस्दा बेर अस्तिम कहाँ र सिक्दा त सोचो त लट्ठी ठिक्कम घर डान डान पानी बर्से टिकी मन छटपटाइ लाग
0: हा त धन्न ब्यालम्ब डिक ठिकम से सुरक्षित ठाउँमा सर रली नारी बट्टी
1: हा हो बदा
2: बर्खक ब्यालम बहिने ढ्यार जोखिम रहत उह मार बहिया से बचकला पहिले हा सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एकचोट्य प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ढ्यार हुलको से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन सधैं बाप्छै।

0: सूचना समाचार अनि मनोरञ्जन को साथी रेडियो टाइगर रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम यति बेला अपराह्नको 4 बज्यो।
1: जीतपुर वाली यह साल तो निश्चिंत हो गए।
2: हाँ तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागा था। पानी जब बरसत रहा तभी इतना आनंद से कहाँ बैठे भी लगता। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
1: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल कर
3: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होता है। यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेविका सबके संपर्क करे सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए। सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
4: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
5: केपी पोली क्लिनिक भुरी गांव में काठमांडू बाट डॉक्टर आउने बारे सूचना।
6: यही भाद्र 5 गते शुक्रवार को दिन
5: पेट छाती सुगर प्रेसर थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन रौनिया एवं पाइल फिशर फिस्टुला विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर शाह द्वारा बिरामी जाँच उपचार तथा अपरेशन हुने जानकारी गराउँदछौ। उक्त दिन दम रोगीहरूको लागि फोक्सो सम्बन्धी विशेष जाँच पीएफटी समेत गरिन्छ। स्थान केपी पोली क्लिनिक भुरीगाउँ बर्दिया।
7: होइन त्यहाँ के को भिड लागेको छ के त्यस्तो जम्मै मान्छे त्यतै गइरहेछन् त।
8: ल साल दिदी पनि सबै सामान एकै ठाउँमा पाइने अल पसल भएपछि अनि भिड लाग्दैन त।
7: हामी कहाँ दैनिक उपभोगीका सम्पूर्ण सामग्री चिसो पेय पदार्थका सामानहरू कस्मेटिकका सामानहरू लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइने जानकारी गराउँदछौ। सबैभन्दा बढी शाखा सञ्जाल भएको अल पसलको शाखा अब भुरिगाउँ बजार बर्दियामा। अल पसल ठाकुर बाबा नगरपालिका 1 कञ्चनपुर जाने बाटो भुरिगाउँ बर्दिया।
5: राइटर हेमराज आचार्य सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98482979774।
9: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज। गर्जन त सधैँ बाघ झैँ।

0: गलाज, मल व्यवस्थापन, चाहपात नियन्त्रण तथा रोग किरा व्यवस्थापन विशेष ध्यान दिए पर्न कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिनमा जनाइल बा। एजोलाह हरियो मलको रूपमा प्रयोग गरी धान खेतीमा हरियो मलको रूपमा तयार मिलक एजोला प्रति कठा 20 किलो या प्रति रोपनी 30 किलो का दरले प्रयोग गर सकि। एजोला वृद्धि करकला कम्तीमा 10 दिनसम्म खेतोमा 5-10 सेन्टिमिटर गहिराईसम्म पानी धर्ल रही। पानीसँग एजोला पुगेन जैनी देखलाग पनि ध्यान दि। एजोला हन धानका पहिला निकै ना प्यालामा न माटीमा मजा चेन मिलाए कृषि विज्ञको सुझाव पातिन। मल व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दि। धान लगेलक 20-25 दिनसम्म ऐना बुट्टा हन समयमा न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद सिफारिस गर्लक माटा अनुसार युरिया टप गर सिक्दी। युरिया विकल्पको रूपमा नानो झोल युरिया 4 मिलिलिटर प्रति मिलिलिटर पानीमा मिलाकन पुरा भिज्नाकै कहाँ छिट सिक्दी। टप्रेस गर सिक्लक पाचक कम्तीमा 24 घण्टासम्म खेतोमा पानी बह नाली। झारपात नियन्त्रण गर्न बेला धान चिटलक 15-25 दिनभित्र झारपात व्यवस्थापन विशेष ध्यान दिए पर। विस्मय रिबेक सोडियम 10% एमसी 25 लिटर पानीमा 12 मिलिलिटरका दरलेखन प्रति रोपनी वा 70 लिटर पानीमा 8 मिलिलिटरका दरलेखा प्रति कठा प्रयोग गर सेक्ना बुलेटिन जनाइल्बा। उसैका औषधि प्रयोग गरेर खेतोमा छिपछिपे पानी हुइलक अवस्थामा फ्ल्याट फ्यान नोजल प्रयोग गर सुझाव देखिल्बा। लाइनमा लगिलक खाना निकाइबेर कोनो विदरको प्रयोग गर सक्जाय। धानमा रोग र जोखिम बढ सेक्ना हुलक कोर्सिन निगरानी गर पर। धान लगा सेक्लक 2-3 हप्ता पाछ खेतोमा लगातार पानी जम्ती रहबेर फेटरी कुन्हा रोग लागे सेक्ना हुलक कोर्सिन नियमित अवलोकन गर पर। रोगी बिदबुरान खार्कन नष्ट गर्न हो अर्को फुलक ठाउँमा जमलक पानी हान निकाल सुझाव देखेबा। उसैको बुलेटिन आवश्यक अवस्थामा बेबिस्टिन 2 ग्राम मिली प्रति पानीमा न मिलाकन 8-10 दिनका फरकमा न 2-3 फेरा वा भिज्ना गरी छिट पर। गबारो ओ पात बिरुवा किरा कसिका नियन्त्रण गर्न धान खेतीमा गबारो किराका कारण बुवाक मुना समस्या आइसक्ना हुलक पर्सिन नियमित अनुगमन गर पर। खेतोमा 5% मृत बुट्टा वा प्रति किराका फुलक एकठो झुप्पा अथवा प्रति मिलिमिटर एकठो वयस्क किरा देखपरलक पार्छ व्यवस्थापनका उपाय अप्नाइना बुलेटिन सुझाव दिहल्बा। पातका टुप्पामा न रलक अण्डा फेन अवलोकन कै कन्ह नष्ट गर खेलबा। धानमा पात बिरुवा किराका प्रकोप हुलक किराका लाभा हुलक पट्टी हन चिर कठिन नष्ट गर सेक्जाय। धान हन कटाह लठिलेक हो डौरी लेक फेन लाभा हन नष्ट गर सेक्जाय। प्रकोप ढेर हुलक मात्रामा सिफारिस गर्गेलक विषादी प्रयोग गर पर। प्रत्येक फेदरी डडुवा अर्थात सिट ब्लाइट मसिन जोगाइ सेक्जाय। धान बाली मन प्रत्येक फेद मन डडुवा अर्थात सिट ब्लाइट रोग जोखिम देख पर्लसे सिफारिस गर्गेलक मात्रामा नाइट्रोजन सँग फसफरस वा पोटास मल प्रयोग गर सुझाव देखेल्बा। रोगका प्रकोप बढ्लसे एलिडाइमाइसिन 2 मिलिलिटर प्रति लिटर पानी मिलाकन सक्कु बनाउन भिज्नाकै 10 दिनका फरकमा 3-4 फेरा छिट सेक्जाय। अब धान बालीमा न किसान हुनका लाग मुख्य सन्देश। अब धान बालीमा न पानी जम्ना अवस्था झारपात हो रोग किराका नियमित अनुगमन गर पर्न सबसे महत्वपूर्ण बाध्य। मल तथा विषादी प्रयोग गरे कृषि प्राविधिक र सल्लाह हो सम्बन्धित बालीका लाग सिफारिस गर्गेलक मात्रा पालना गर पर्न। कुछ दिन यहाँ लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा साताका शुरूआतमा कुछ स्थानमा न मध्यम तथा अन्त्यमा मध्यम वर्षा हुन सम्भावना बा। साताका शुरूआत मध्यममा 1-2 स्थानमा न भारी वर्षा तथा मेघगर्जन सत्याङ्क सम्भावना रहला कुर्से सतर्क रह सुझाव दिएगेलबा। किसानहरूको धान खेतमा न एजोला प्रयोग उचित पानी व्यवस्थापन तथा गोडमेलमा न ध्यान दिनासँग धानक रोग किराका नियमित अनुगमन तथा कृषि अनुसन्धान परिषद सुझाव दिहेल्बा। मौसम सम्बन्धी जानकारीका लागि निशुल्क 11:55 हो। कृषि तथा पशुपन्छी जिज्ञासाका लागि 11:35 सम्पर्क कार्यक्रम अपनाउक र बुलेटिनको बारेमा जानकारी लिन सक्ने बाटी।
1: कृषि औ पशुपालन सम्बन्धी जिज्ञासा केलक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदकै पैसा नै लग्न नम्बर 11:35 में हरेक सोमवार संध्या के 5 बजे से 7 बजे संपूर्ण कर सीख जाए।
0: अब हमारा सुन्टी बाटी कृषि विशेष रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि कार्यक्रम का पुछारमा आशिकली आप पाला हिलबा हमार प्रश्न अपना जवाब प्रश्न असिम्बा रासायनिक यूरिया मल के सट्टा मना कौन मल प्रयोग कर सिक जाए प्रश्न फेक फेरा यूरिया मल के सट्टा मना कौन मल प्रयोग कर सिक जाए एसएमएस मसिना उत्तर पठाकर सहभागी बन सकती। ये प्रश्न के उत्तर अपना जनलवादी कला से 98583961 आपन नाव ठेगाना सहित एक हप्ता भीतर एसएमएस मसिन उत्तर पठाकर सहभागी बन सकी सही उत्तर पठैलक हुकन से एक जहन गोला पठा से विजेता छान का कार्यक्रम के तरफ से एक छोटी सर पौधा देने वाली आप पालामिल्बा गैलक कार्यक्रम मन हमारा पुछलक प्रश्न सही जवाब दिना विषय में हमार पुछल प्रश्न रह राष्ट्रीय धान दिवस कहिया मना जाए एकर सही उत्तर रह असार 15 गते ई प्रश्नक उत्तर ठ्यार जनसंग्रहण लिखकर पठाइल रह ई मध्य मचेन एक जन हमारा गोला प्रथा मचेन विजेता घोषणा करल बाटी वहां हुईट ठाकुर बाबा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 का दिल्लीराज उपाध्याय वहां चाहे गोला प्रथा मसे विजेता भे सफल हिलबाट दिल्लीराज उपाध्याय हार्दिक बधाई बा पुरस्कार के लाग अपना एक अठार भीतर अपन परिचय खुलना कार्ड लेकर टाइगर FM का कार्यालय में संपर्क कर सीखने बाती
1: रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि सुन सकल पा अपन मन में लागल विचार और कृषि खेती के विषय में कोनो प्रश्न और जिज्ञासा हुई कले से अपने उग्र अपन फोन में से कह सीखने बाटी है ओ SMS ईमेल में से फिर लेखी सीखने बाटी है अपन जवाब में विचार और प्रश्न धरक लाग कृषि अनुसंधान परिषद के पैसा निलग्न फोन नंबर 11:35 में लेखक निर्देशन के आधार में रेकर्ड कर सीखने बाटी है पुस्तक रेडियो टाइगर के संपर्क नंबर 0884041888 ओ मोबाइल नंबर 98580309161 में फोन कई रेकर्ड कराए और लिखाए फिर सीखने बाटी है उसका का रेडियो टाइगर FM@gmail.com में फिर अपन जिज्ञासा पठाई सीखने बाकी
0: लीटर रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि के और ऐना भाग में नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि मौसम सलाह बुलेटिन हो कृषि विज्ञ से लिखल सलाह सुझाव ऐना हप्ता में अपनाई से एक जिना कृषि संबंधी ढेर जानकारी संग और मेरमेरी गतिविधि फैले ऐना भाग मन ध्यान होने नहीं बात कार्यक्रम का ऐना भाग के सुनती रवि कार्यक्रम सुन के सुझाव सलाह फेना लिख कर पठिने बाटी कना आशा करती राष्ट्रीय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र रेडियो टाइगर संघ संघरिया RTO मैकी कारण फिना विदा हुई राम राम नमस्कार।

0: तुम ऐसी कोई भी लड़की नहीं हो, कैसे एक्सप्लेन करूँ कि तुम स्पेशल हो?
1: ये भी मैं बताऊँ, मैं कैसी स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है? तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा?